नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहाँ को बगता,

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में। पातशाह आखदे

तीर्थ गवन करे। खटकर माते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए। राज

मन मूर्ख अजहू नहीं समझत सिख दे हार्योनी सिख दे हार्योनी नानक पा

सत्संग ये शब्द भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भक्त रविदास जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देने वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत पे किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। ये सवाल उठाया है किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा किस टेक्निक दे द्वारा किस विधि दे द्वारा किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत पे

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है उपाय है, किस तरह? साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिसके द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसनगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

0: के निहन में परम गति पाले ही है। सप्त उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस जहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करदे हन, इस दे नाल सहमत हन, इस दे नाल इकमिक हन अते ताकीद करदे हन के इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी दा निशाना है तो सात संगत तो अलावा हो दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: कमले इधर उधर ना फिर

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी च आखते हैं कि जो साधुओं का संग है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आना, किसी होर दुनिया च भी काम आता है। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है कहिंदे हन ऐ जिहड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे साधु संत दोनां जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं प्रेम नाल गाओ

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी प्रफाउंडनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साड़ियां निगाहां दे विच जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वह इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हुंदा सी। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंद तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंद तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंद जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हां, ते नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटे। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहिंदे ओ सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहिंदे मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सिते, डिले नहीं कीते। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठी ही गई हाट्यो। वह कहिंदे जिहड़ी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठी गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं। पहला उसनों सुनो, फिर उसका असी अर्थ करांगे।

पूजा अकाल की। पूजन योग हस्ती है अकाल पुरख, अकाल जिहड़ा काल तो रहत है, जिसने सृष्टि नु जन्म दिता, जिसका नाम अकाल मूर्त है, जिहड़ा अजूनी है, जिहड़ा सह भंग है, जिहड़ा सुते सिद्ध प्रकाश हो जांदा है, वह मिलता गुरु की कृपा नाल। सतगुरु साहब गुरु रामदास महाराज जी ने बड़ा पवित्र वाक कहा है, भई वह गुरु की कृपा नाल मिलदा, जूना तो रहत है, जूनिया विच नहीं आउंदा, 84 लाख जून च नहीं आउंदा, जन्म मरण च नहीं आउंदा, वह जूना तो रहत है। है कौन जी? वह अकाल मूर्त है। उसका नाम की है जी? उसका नाम है सतनाम, सच्चा नाम। उस तो छुट कोई होर भी ताकत है ना जी? वह एक है, ओंकार। ओंग त्रै काल विच प्रकाश करन वाला, तिना समयां दे अंदर ओ अजागर होन वाला एक अकाल पुरख महाराज है। सब गावे हर हर उत्तम बाणी, उस दी दित्ती होई बाणी नू सब गाउंदे ने। पहला उस दी पूजा करदे ने, पहला उस नू पूजदे ने, फिर पूज के उस दी दित्ती होई बाणी नू गांदे ने। उस दे दित्ते होए जो अकाल की बाणी है, दिते हुए अल्फाज ने, दिते हुए पवित्र वाक ने, मिठे वाक ने, उन्हां नूं गांदे ने ते गा गा के विचार करदे ने। सब गावे हर हर उत्तम बाणी। पर गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज साहब गुरु रामदास महाराज नूं सवाल करता सिखा ने, सतगुरु अकाल पुरख दी हस्ती ते वेखण विच नहीं आउंदी, ना असी कदे वेखी है, जेड़ी अस हस्ती असी वेखी नहीं महाराज, उस दी पूजा किवें करिए? महाराज कहंदे ने भी अनुभव द्वारा, अनुभवता दे नाल उस नूं पाया जा सकता, वो नजर नहीं आउंदा। ते महाराज फिर जो नजर ही नहीं आउंदा ते उस नूं वेखिए किस विचों? कहन लगे उस दी बाणी विचों। अकाल पुरख महाराज दे दर्शन बाणी विचों हुंदे ने, रब परमात्मा ईश्वर दे दर्शन बाणी विचों हुंदे ने, क्योंकि बाणी अकाल पुरख दा रूप है, अकाल बाणी दा रूप है।

जे असी उस सवाल नू बदली करना चाहिए ते असी बदली करन दे समर्थ नहीं हां, असी नहीं कर सकते। पत्थर दा सुभाव जन्मजात तो कठोर।

एक बारी सारे बोलिए, धन गुरु तेग बहादुर साहब, कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आख देन

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आखदे ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसे ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी से मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा

माता कहंदी है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया, स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आख देन कितना ही पै रोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आख देन देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई लट छिटकाए तिरिया रोवे।

बिदावल राग बहुत प्रसिद्ध अति पुरातन राग है। लगभग हरेक ग्रंथ ने इस राग का उल्लेख किया है। मिलाप उपरंत पैदा हुई निराली खुशी, आत्मक जिंदगी के सफर विच जो हुलास खेड़ा आनंद पैदा करती है, उससे दा बहुता वर्णन उचारी बाणी विच गुरु साहब ने किया है। पर दूजे पाए बिलावल न हो वई, जिस मुख विच नाम है बिलावल उन्होंने सोभदा है। बिलावल तब ही कीजी है जब मुख होवे नाम, राग नाद शब्द सोहने जा लागे सहज ध्यान। हर रोज की करिए के बिलावल बनिया रहे, इसलिए वारसत दी बाणी उचारक समझाया है, बिलावल पक्की हो जाएगी जदों तोर अंदर प्रतख ज्ञान हो जाएगा कि सब उस परमेश्वर दी पैदाइश है। इसका ज्ञान थित नामक बाणी विच भली प्रकार जनाया है। इस राग विच सारे शुद्ध स्वर लगते हैं अते दिन दे दूजे पहर गाउण दी प्रथा है। श्री हरिमंदर साहब विच आसा दी वार तो बाद बिलावल दी चौंकी लगती है। सरवण करो निर्धारित रागां विच गुरबाणी दे दो शब्द। पहले शब्द दा गायन कर रहे हैं भाई निर्मल सिंह जी। शब्द दे बोल हैं बोलो भैया राम नाम पतित पावन। दूजा शब्द धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का है अते कीर्तन कर रहे हैं भाई महेंद्र सिंह जी सागर। शब्द है हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा नह चूके, गुर एह भेद बतावे। पहला शब्द बोलो भैया राम नाम पतित

धन गुरु अर्जुन देव महाराज दिन राती आराधा प्यारो निमुख ना कीजे ढीला और ए भी गुजरी राग और गुजरी राग दी तुम्हार है।

परम सम्मान योग गुरु खालसा साहब सिंह जी, आप जी बड़े प्यार साहब श्रद्धा साहब धन धन श्री गोबिंद सिंह साहब जी महाराज तिना का धन्यवाद करते हुए खालसा पंथ के सृजन हारे दाता की सिफत सराहवे अपने शुकराना करन लई बाणी नाल जुड़ा गुरसिख साध संग ने यतन किया है। बहुत ही शलाघा योग कदम है। एक गल याद रखने वाली है, वो है अपने पिता का विरसा। जे असी अपने पिता दे वारस हां, जायदाद असां पिता की सामनी है, हक असी जताते हां, ते फिर ये शब्द जो कहे हैं गुरु साहब जी ने क्यों जा खालसा साजिया तिख्या है। आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंजक नाहिं पिए। गुरु नानक की घाटी प्रथा है, गुरु चेला बनिया चेला गुरु बनिया, इस करके कोई गुरु अते चेले विच भेद नहीं रहा। एक गल होर याद रखने वाली है, गुरु साहब ने सानू गल नाल लाया, आनंदपुर का वाकया याद करो। सिंह विदावा लिख के दे गए, आते अपने घर प्रत आए, उन्होंने मरी हुई अणख जगाया कि ने कर दिया मातावां भैणां अते सिंघणियां ने। मैं जो तत् विचारिया है, अगर अजकल दिया पत्नियां भैणां मातावां इस गल का प्रण कर लैन कि गुरु दे सिख अखवाण वाले अते गुरु नू विदावा लिख के चल रहे गुरसिख अगर गुरु दे बनना चाहते हैं, अगर गुरु का अखवाना चाहते हैं, तां गुरां दा हुक्म मने। ऐसी गल ना होवे, असी भुले हुए छेती घर नू प्रत आईए ते अच्छा है। ऐसा ना होवे के घर प्रत के फिर जिन्नी कुर्बानी चाली सिंघां नू करनी पई, इतिहास आप दे सामने है। सो ऐसे दशमेश पिता जिन्हां ने सानू गरीबां नू लताड़िया होया नू गले लाया, ऐसे शहनशाह मतलब भाई साहब भाई नानदास साहब जी ने जो शुभ वचन कहे हैं, आप प्यार साहब।

नत नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहिब विच एक होर राग स्वरूप मिलता है, वो है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों कीती है, उत्थे स्पष्ट तौर ते नट नारायण महला चौथा पांचवा आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा, नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकल ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गौण दा समय रात दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। उदाहनो मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर का।

नौजवान कहन लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दिंदा, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदा। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे